0: आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन
2: प्रति मुहूर्त प्रति कर्तव्य को उचित भाव संपादन करवा प्रीति मैत्री संपर्क मधुरीमें सारा जगत को आपड़े ना समय सकाल 6:00 बजे जाऊँ शुणा हिंदी और इंग्रेजी।

की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

0: recently visited Italy in June 2024 to attend the G7 summit. Before arriving in Rome, the Prime Minister was in Oslo, Norway, where he participated in the third Indian-Nordic summit. This is the final leg of his five-nation tour. Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third Indian Nordic summit in Norwegian capital Oslo.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: U.S. Secretary of State Marco Rubio will undertake a four-day visit to India beginning May 23rd. This will be his first visit to India. U.S. State Department has announced the visit that will take Rubio to Kolkata, Agra, Jaipur and New Delhi. State Department spokesman Tommy Pigott said Secretary Rubio will discuss energy, security, trade and defense cooperation during meetings with senior Indian officials. U.S. Embassy in New Delhi said that India will host a meeting of the Quad group, which includes Australia, Japan and United States, and Secretary Rubio will attend the meeting. India is set to host a meeting of Quad foreign ministers next week that is expected to deliberate on pressing global challenges, including the fallout of the West Asia crisis. New Delhi meeting is planned for May 26th and it is scheduled to be attended by Rubio, Australian Foreign Minister Penny Wong and Japanese Foreign Minister Motegi Toshimitsu, with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar presiding over it. Directorate General of Civil Aviation has directed the inspection of the fuel control switches of an Air India Boeing 7878 aircraft at the original equipment manufacturer facility in the presence of DGCA officers. According to the DGCA, the Air India Boeing 7878 aircraft VTANX was grounded on 2nd February this year after operating flight AIC-132 from London's Heathrow Airport to Bengaluru. In IPL cricket, riding on a brilliant knock of 93
2: की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।
0: The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: दिया जायतिबा सूचना अनुजाई आसंता 23 तारिख पर्यंत एथिपई आवेदन करा जाई परिबो परिषदर वेबसाइट रे सृष्ट समस्या एवं छात्र छात्रि को पर्याप्त समय प्रदान करबा लक्ष्य नै एही निष्पत्ति ग्रहण करा जायतिबा सीबीएसई कहिछि गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र ओडिशा सेवा अधिकार आईन अधीनरे नागरिक सेवार कार्यदक्षता और डिजिटल सेवा व्यवस्थार अग्रगति समीक्षा करिछंती विभाग अधीनरे रहितबा 30टी विज्ञापित नागरिक सेवारे प्राय 94% आवेदन को आईनगत भावे निर्धारित समय सीमा मध्यरे समाधान करा जायछि गृह नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र अध्यक्षतारे ओडिशा रे सहरांचल यातायात व्यवस्थार विस्तार भित्तिभूमि विकास सड़क सुरक्षा पदक्षेप नै क्रूट पक्षरु एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होय जायछि बैठक रे क्रूट रो प्रथम पर्याय विस्तार योजना अधीनरे विभिन्न रूपरेख संपर्क रे आलोचना होइतिला पीएम ई बस सेवा योजनार कार्यान्वयन संपर्क रे समीक्षा होइतिला मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग को अध्यक्षता रे आभासी माध्यम रे जिल्लापाल मानक सह बैठक होईछि भुवनेश्वर लोकसेवा भवन सम्मेलनी कक्ष रे अनुष्ठित बैठक रे खणि प्रभावित अंचल रो विकास पई सीएम संपदा प्लेटफार्म रो कार्यकारिता सह विभिन्न विभाग रो गुरुत्वपूर्ण योजना ओ कार्यक्रम रो कार्यान्वयन संपर्क रे आलोचना होईछि बैठक रे अर्थ विभाग संबंधित क्रेडिट डिपोजिट अनुपात वृद्धि करी राज्यर आर्थिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करबा नै गुरुत्व दिया जायतिला तालचेर स्थित पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज ओ हॉस्पिटल को कार्यक्रम करा जिबा संपर्क रे एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक विभागीय कमिश्नर तथा शासन सचिव अश्वती एस को अध्यक्षता रे अनुष्ठित होईछि भुवनेश्वर रे आयोजित बैठक रे हॉस्पिटल रो भित्तिभूमि एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान संपर्क रे समीक्षा होईतिला गंजाम जिल्ला रे प्लास्टिक व्यवहार को ह्रास करबा नै प्रशासन पक्षरु आम गंजाम स्वच्छ गंजाम अभियान रो शुभारंभ करा जायछि एथि पई कपडा तयारी बैग ओ पुनः व्यवहार योग्य सामग्री व्यवहार करबा को जनसाधारण को अनुरोध करा जायछि पुरी श्री मंदिर रे आज श्री जीव को बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबो द्वितीय भोग मंडप नीति शेष हेबा परे संध्या 6टा रु राति 10टा पर्यंत एथि पई सर्वसाधारण दर्शन बंद रहइबो कटक जिल्ला रे स्वतंत्र सघन संशोधन संपर्कित सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होई जायछि जिल्लापाल दत्तात्रय भाऊसाहेब सिंधेंक अध्यक्षता रे अनुष्ठित बैठक रे बूथ स्तरीय एजेंट मानक भूमिका संपर्क रे आलोचना होईथिला नुआपडा जिल्ला रे मध्य स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन संपर्क रे जिल्ला प्रशासन सह राजनैतिक दल मानक एक बैठक अनुष्ठित होई जायछि बैठक रे भोटर तालिकार सठिकता ओ पारदर्शिता निश्चित करबा पई आलोचना होईथिला कंधमाल जिल्ला रे सर्वदलीय बैठक रे बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्ति पई आलोचना होईथिला आंचलिक संवाद वर्तमान पई एतिकि परवर्ती आंचलिक संवाद सुनि परिबे अपराह्न 2:32 मिनिट रे
1: आकाशवाणी कटक आमर स्वास्थ्य रे सुनंतु आम मस्तिष्क आलोचना करिचंती डॉक्टर रवींद्र कुमार तळाई
2: ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ଗଠିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆଘାତରୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶରୀର ଗଠନ ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ ଶରୀରର ଏହି ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଗ୍ରନ୍ଥି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏପରି ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ବସା ଦହି ଭଳି ନରମ ଏହାର ଓଜନ 1200 ଗ୍ରାମରୁ 1400 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି ପରଦା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବାହାର ପରଦା ରୋରାମେଟର ମଝି ପରଦା ଆରାକ୍ନଏଡ୍ ମ୍ୟାଟର ଟାଣ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି କିନ୍ତୁ ଭିତର ପରଦା ପାୟାମେଟର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନରମ ପାୟାମେଟର ଏବଂ ଆରାକ୍ନଏଡ୍ ମ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥାଏ ଯାହାକୁ ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ କୁହାଯାଏ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏକ ଆଘାତ ପରିବହନକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ କାମ କରେ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରଭାଗରେ ହେଲମେଟ୍ ରହିଲା ଭଳି ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ଏକ କ୍ରାନିୟମ୍ ବା ବ୍ରେନ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ଏହା 8ଟି ହାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଜନ୍ମବେଳେ ଏହି ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ମଝିରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟାନେଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥିବାରୁ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ଆକୃତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏବଂ ଶିଶୁଟି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ କ୍ରାନିଆଲ୍ କହୁଥିବା ବ୍ରେନ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ନରମ ମସ୍ତିଷ୍କଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହେ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଏହି ହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବେଳେ

0: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
1: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
0: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
1: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
2: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे यादें और चेतनाथ सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, आमार गर्व गौरव, तांकरी पदावली ओडिया साहित्यको करेछि समृद्ध। आसन्तु तांकरी रचना शुणिबा। एई छन्द गाइछन्ति श्यामामणि देवी।

0: हर घर में कई कहानियाँ होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है,
1: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
2: मैथिल्य कवि गोपालकृष्ण पटनायक पदावली ओडिया जनमानस को सदैव प्रलुब्ध कर आसंत रचना शुणा ओडिसी परेषण कर लता घोष।

ମିନାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କ ରଚନାରୁ ଗାଇଛନ୍ତି। ଝୁମ୍କିରେ ଥା।

0: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
1: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है, चेट्टीनाड सीमेंट पर।
2: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले, चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: रागमंजर परवर्ती छंदर रहिछि भानुमती सांगो कंठरी गीतटी, मनोज पटनायक रचना, राग कामोद पर आधारित गीतटी।

0: नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का

0: हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप ही 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है।

0: मंत्रालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इस खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सिर्फ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिका सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सभी अखबारों

0: के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honor of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honor. Today's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memorandum of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also grant a morous culinary, medicinal, and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ଶ୍ରୀ ବିଥିଲେ କିଶୋର କୁମାର ଏବଂ ଆଶା ଫଷ୍ଟଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏଫ୍ଏମ୍ ଭେଣ୍ଟର 100.6 ମେଗାହର୍ଜ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम कैटेनार्ड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ कैटेनार्ड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: इरिगेशन थी विभेन्द्रनाथ, संगीत महापात्र, पालक चंद्र विश्रंकर रचना।

ने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशक तिरुपति की आवाज में बी केयरफुल फिल्म का गाना, कुमार के हैं बोल और सिद्धार्थ सुहास की है तर्ज़।

0: अभी आप सुन रहे थे बके की क्रेजी बारात फिल्म का गाना। दोस्तों आज 20 मई है, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे। तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मधुमक्खियां प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे फूलों से पराग एकत्र कर पौधों के परागण में सहायता करती हैं, जिससे फलों, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन बढ़ता है। और लेकिन दोस्तों आज प्रदूषण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है। ये चिंताजनक बात है ना? अतः हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, तभी मधुमक्खियां सुरक्षित रहेंगी और हमारी खाद्य श्रृंखला भी सुरक्षित रहेगी। इस वर्ष की थीम है बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। तो चलिए चलो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए इंग्लिश वो इंग्लिश फिल्म का ये गाना आपको सुना रहे हैं।
1: नौराई माझी लाडाची लाडाची ग, आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग,

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए कनिष्ठ सेठ और कविता सेठ की आवाजों में जुग जुग जियो फिल्म का गाना। ये एक पारंपरिक रचना है जिसे संगीतबद्ध किया है कनिष्ठ सेठ और कविता सेठ ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए शशि और डीजे खुशी की आवाजों में लक्ष्मी फिल्म का गाना। गगन आहूजा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शशि और डीजे खुशी।

0: अय्याम पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है, कबन मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल सबको, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झंकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने भाई, मेरी जंग, सुर संगम के वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी मां कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नडिगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोक नाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 वर्ष के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैगडलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषय को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971 गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक और 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण और दूसरी ओर एस एल भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ, उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बीवी कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न थनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीरदे मग्ने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत,

मंथन स्वामी जीवन मुक्त संपर्क रत्नदीप बेकसूर आशा मनपसंद अपने पर आए क्षमा तेरी कसम आनंद भैरवी एक बार चले आओ तराना जमाना मेरी जंग सुरसंगम सूत्रधार आकर्षण मिल गई मंजिल मुझे चैतन्य ब्रह्म अंतनाद गुना प्राणदाता आतंक चाइना गेट AK-47 पुकार इकबाल डोर 8x10 तस्वीर आशाएं लाइफ गोज ऑन एक था टाइगर शिवाय चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम जो तेलुगु में शंका भरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाने
1: बिल्कुल नहीं आऊंगा। पिताजी आप अच्छे पिताजी हैं।

अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा डब्ल्यू निर्दे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

चंदनंदु कलदली कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्त चित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की सेवा के।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: अब दलीलों के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकील से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कौन रीमा घर सोलर लगे दे ला?
3: हाँ मोर अपा एबे ओ बिजुली बिल पाई
2: चिंता नहीं माने
3: हाँ अपा सोलर करी दे मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बची जीव
2: सतरे
3: खाली सेति कि नु हपा सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
4: आज्ञा हाँ पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउचंती। pmsuryaghar.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
5: नारीर यात्रा भी दिगंत विस्तारी तार चिंता चेतना और गतिमुक्ति समाज को नूतन देश देवरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। तथापि से कौन खाइब न खाइब कौन पिंधिब न पिंधिब से संपर्क में वृथा मत मंतव्य शुणा मिलूँ। पुरुष जो क्षेत्र मानक स्वच्छंद विचरण करुच्छे नारी से क्षेत्र गले अनेक दुर्घटनार शिकार होगा पड़े। से तो महात्मा गांधी दिने कहते जिते दिन पर्यंत नारी राति थे निर्भय रास्ते जातायात करते दिन पर्यंत देश स्वाधीन होबनी।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି।
1: ନିଅ ଏ ମାସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଭରିଦେବ।
0: ବାପରେ ଏତେ ଟଙ୍କା?
1: ମୁଁ ତ କହୁଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଦବା, ମାସକୁ 300 ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ବଞ୍ଚିଯିବ।
0: ସେଥିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜାଣିଛ?
1: କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି ପରା।
2: ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 138,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର .gov.in ରେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
3: हर घर में कई कहानियाँ होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार, हर कोना दासां बयां करता है।
4: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
5: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, हमें सही राह दिखाती।
6: अब टेलीकॉम के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
7: तो डाउनलोड करें आज ही टेली ऑफर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सुनो हे पोरी की तोराए सिरुगा चोरी तो सुनी पापा।

से नदी की पार होई गोले बेनी बीरो देखिले कन्याए ओती पर्वत ऊपर

महाविश्व रूप माता विकासी नथिले वीर मूर्ति छाड़ी से शांत मूर्ति होइले मौनावती होइनो द्यंती न द्यंती सम्भासो

से ही एकाएक मोही ससुर हेला दुर्गा सोनी ध्यानी दुर्गा देवी बीजे बोले खेचोई वाहन जग जननी मोहिनी दुर्गा रूप देखी मोही ससुर नव होइला निर्माण अद्भुत होई अछंति तुके बन देसु ये रूप देखाई मोर सन को बिना।

0: तोर मांस मु खाइ जई भाजी आहा महिषासुर रानी सुनी महामाया
1: अच्छा
0: सकिते ककस वाक्य होइ न निर्भया।

0: हिरो किति पद मु बख्या कहली आजी हे भाबु गजन सुनंदु रे मन आउ दोष थिले क्षमा देव करे जणाण आज एति कि मोदी मेर न आहे गयो को आज एति कि मो निवेदन
1: ई मोसा पीरण भंग मन भी मति भ्रमा।
2: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
3: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है। चेट्टीनाड सीमेंट पर
4: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले। चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, हमें सही राह दिखाती।
6: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
7: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: लोकगीत कार्यक्रम सुनते उषा को परिवेशन कले सीमांचल स्वाई एवं साथी विषय था महिषासुरबद्ध। कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र प्रसारित हो FM बैंड 100.6 MHz जुगे आपन ठीक आकाशवाणी मेरे कार्यक्रम को प्रसार भारती मोबाइल न्यूज एन एयर एप रेडियो और अन्य लाइव स्ट्रीमिंग जरिए शुणिपारे। आरंभ कर आज महिला महा कार्यक्रम उपस्थापन चंदना मिश्रा। श्रोता बंधु, आकाशवाणी नववर्ष पूर्ति अवसर में देशव्यापी उत्सव पालन करा जाउछि। ए अवसर में आकाशवाणी ब्रह्मपुर पक्ष प्रस्तुत एक स्वतंत्र कार्यक्रम आज नाटक अन्वेषण रचना निर्देशन नलिनीकांत गौड़, प्रयोजना सिद्धार्थ शंकर महाराणा और उपस्थापना चंदना मिश्रा, अभिनय पुष्पिता पट्टनायक, मल्लेश दास, प्रभासिनी पाढ़ी एवं नलिनीकांत गौड़।
9: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेट्टीनाड सीमेंट।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी।
1: श्रोता भूणी नमस्कार, आंतरिक शुभेच्छा और शुभकामना सह आरंभ करुछु आजिर महिला महल कार्यक्रम। आजिर उपस्थापनारे मु चंदना मिश्रा।

0: আচ্ছা দাশবাবু, আপনার ঘরটা 1970 তৈরি হয়েছিল, রাইট? তাহলে এ পর্যন্ত এত স্ট্রং কেমিতি আছে?
1: আরে এইটা একদম সিম্পল, এবং সেইথাই মুঁ সেতেবেলে মুঁ বিশ্বাস রাখিলি, এবং আজি মধ্যে চেটিনাড সিমেন্ট উপরে
2: শক্তি যাহা বর্ষ বর্ষ নুহে বর পিঢ়ি পাই রহি থাই। চেটিনাড সিমেন্ট সুপার গ্রেড সিমেন্ট 64 বর্ষর দৃঢ় মূল দুয়া। চেটিনাড সিমেন্ট দ্য পারফেক্ট কনক্রিট চয়েস।
3: পশুপক্ষীঙ্কু অংশুঘাতরু রক্ষা করিবা পাই কিছি উপায়?
4: অংশুঘাত নহবা পাই দিন 11টারু অপরাহ্ন 3টা পর্যন্ত টাণ খরারে গৃহপালিত প্রাণীমানঙ্কু বাহারকু ন ছাড়ি বহাড়রে কিংবা ছাই স্থানরে রখতু।
3: পশুপক্ষীঙ্কু স্বচ্ছ থণ্ডা পানি পিইবাকু দিয়ন্তু, এবং প্রাণীঙ্ক বিশ্রাম স্থান বা কোঠরে জলকুণ্ডর ব্যবস্থা করন্তু।
4: গুহাল কবাট ও ঝরকারে ওদা অখা ঝুলাই মঝিরে মঝিরে পানি সিঞ্চন করন্তু।
3: বুলা পশু ও পক্ষীঙ্কু অংশুঘাতরু রক্ষা করিবা পাই ঘর আগরে জলকুণ্ডর ব্যবস্থা করন্তু।
4: অংশুঘাত হেলে পশুপক্ষী কিছু খাঁতি না, পাটি পাটে নিঃশ্বাস নেওয়া সহ ধকে হতে পাটি ও নাকপুডারু ফেণ বাহারে ও সময়ে সময়ে জিভ পদাকু বাহারি আসে।
3: অংশুঘাত আক্রান্ত প্রাণী তুরন্ত থা ছাই স্থানক স্থানান্তরিত করতু। প্রচুর থা পা পিবা দেওয়া সহ নিকটস্থ প্রাণী চিকিৎসক পরামর্শ করতু।
4: অধিক জাঁয়া টোল ফ্রি নম্বর 1962 কিংবা 1553333 রে যোগাযোগ করতু।
3: মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, ওড়িশা সরকার।
5: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
6: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: समस्त सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: ए पर्यंत यही योजना रे 8.85 लाख अधिक लाभार्थी जुड़ी ही सारे। यदि आप 18-40 वर्ष बयस होई थांती तबे मासिक अटल पेंशन सहित तीनोटी ग्यारंटी सुविधा विषय जानिबा पई आपनक बैंक शाखा सह जोगाजोग करंतु।
9: শুনেছিলেন মহামাল কার্যক্রম উপস্থাপন করলে চন্দনা মিশ্র। পরবর্তী কার্যক্রম হিন্দি সমাচার, পরপরে বিবিধ ভারতী কার্যক্রম রেলকির প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি এবং মুম্বাইর।
10: महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
11: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान

0: विकास तथा समाज कल्याण विभाग की योजना पहली जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदानी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: मिठाइयाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखी ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घुलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद बताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अपने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में राज हट। इस फिल्म का गाना अजरत जयपुरी है गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: कुदूरे वाला।
1: अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की, फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नेयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम तुमसा नहीं देखा।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बाबा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
0: तेरा जवाब नहीं
1: छिटा है मोहब्बत का राग,
0: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
0: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
3: आपने ट्यून किया है भारत नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का और ओपी नायर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम रागिनी।

0: पंकज राखियां मलते मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे,
1: मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे।
2: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में राम और श्याम फिल्म का गाना शकील बदायनी थे गीतकार, संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म का नाम मजर इंडिया।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

और आज इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार है मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूँ।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और सकार

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, मन करता है इसे गले लगा ले। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकले बाहर किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। ये है आज की इबारत। और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम 2 गाने तो जरूरी तौर पर नहीं है, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

गुलजार साहब के बोल, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमोहर शब्द से ही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमोहर शब्द से पहले, वो सुनवाते हैं फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये अच्छा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। श्रोता लिखती हैं कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदिया पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती है कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपकी आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना रहता है ये गाना आज के कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा एक मिनट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखते हैं कि यूनुसी गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है, ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही

होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस इसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

ये गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना मदन मोहन जी की आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 1 मई को सूर्या सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहां थी? मैं आपको बताता हूं, दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया

तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप जमीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत सागर किनारा गुलमोहर नदी पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है, उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:00 तकरीबन 17 मिनट और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक बताइए कि अपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलमोहर और अमलास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब जूही, राती रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसोपालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति शंभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता है जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कह रही है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलता, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना जाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00 एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कह रहे हैं। एक श्रोता जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकूनदेह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया भाई कि वो वहीदा रहमान है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हा नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामासी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

0: नदिया से दरिया।
1: लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यार है।
2: न जाओ शाम पैया पर नदी ना रे, न जाओ शाम पैया पर।
1: और नदी के गानों का सर आज ये भी तो है।

लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाए। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सोख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है, बस यही तो आज हमारे इस

अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रही है कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ पांच गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता है जो कहती है कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और रक्षा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी

0: सागर को सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: अपने
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है?

मुबारक बिगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्हें जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर दिखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सुनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत रफी आजमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीर की हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

राज्य का खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के

0: तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यूएलबीजीएम V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: यह परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित यह मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मलिक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापा दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू

0: जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46

0: अक्सर होंगे और हरियाणा में हिसार रोहतक झज्जर भिवानी गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे राजेश बाली आकाशवाणी समाचार जलंधर
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलुओं का उल्लेख किया डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL-PGM-B3 का सफल परीक्षण किया रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
2: कार्यक्रम शुणुले आकाशवाणी दिल्ली आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे कि समय परी।

0: आम परंपरा आम कला संस्कृति आकाशवाणी ही रखी सही
1: बन्या हेउ बा महाबात्या सब परिस्थिति रे
2: गारु सहर जाए सब स्थान रे
1: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
2: जुआंग ओ सांतालक ठारु बंडा एवं क्वेन को जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

0: विविध भारती पर।
1: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए सुनिए शैल बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और

0: मैं रही मथुरा, वृंदावन और अयोध्या,
1: अरे वाह।
0: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते पड़ती गई हम लोग जाते रहे वहां।
1: क्या बात है, क्या बात है। जनी
0: जी
1: चेहरे की चमक बता रही है और
0: बिल्कुल
1: आपकी मुस्कुराहट और
0: जी
1: हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
0: बिल्कुल,
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा
0: बहुत
1: अनुभव?
0: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई हैं मंदाकिनी जी।
1: अच्छा।
0: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो आप, एक मंदिर जो वहां का प्रसिद्ध है। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे, तो
1: अच्छा।
0: बस आप रोपवे तक पहुंचिए अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी जी से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी पहुंच सकते हैं, 20-25 मिनट अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो,
1: अरे वाह।
0: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा।
0: हाँ तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी है तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब ये कि अब यात्रा उतनी तकलीफ दे रही है। कई बार
0: नहीं
1: हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं,
0: जी
1: लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है ना।
0: बिल्कुल। और लेकिन अगर आप ये सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि
1: हाँ।
0: वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल
1: हाँ,
0: चलेंगे उतना अच्छा है,
1: वो अच्छी
0: हमने भी।
1: बात है, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए।
0: बिल्कुल
1: और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो,
0: बहुत
1: तुम्हें देखकर लग रहा कि इतनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद भी कहा तो
0: जी
1: तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी
0: बिल्कुल
1: तुम,
0: बिल्कुल,
1: है
0: बहुत अच्छा
1: ना,
0: लगता है,
1: और
0: बहुत पुण्य लगता है
1: आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा
0: बिल्कुल
1: को
0: बहुत
1: करने के बाद। इतनी जगह घूम के
0: जी।
1: आई हो
0: इतने लोगों
1: तो,
0: को देखा, सब कुछ किस
1: हाँ,
0: तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देख के बहुत अच्छा
1: नई
0: लगा
1: संस्कृतियों का अनुभव
0: बहुत
1: होता है हमें, नए
0: जी।
1: अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
0: तरह तरह
1: हैं।
0: के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते
1: अरे क्या
0: हैं
1: बात
0: जो
1: है।
0: मेरा बहुत फेवरेट चीज है।
1: हाँ।
0: मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहां बनेगी,
1: उसे
0: लेकिन
1: फर्क होता है
0: स्वाद
1: स्वाद
0: बिल्कुल फर्क
1: का।
0: होता है
1: हाँ, क्योंकि पानी का, बनाने वाले का
0: जी
1: तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हमारा जो स्वाद देने का तरीका है वही बदलता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा लगता
1: यात्रा
0: है,
1: करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं
0: बहुत
1: मानती
0: सुकून
1: हूँ,
0: मिला
1: और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, काफी गुड महसूस कर रही
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं
1: हैं
0: अपने अंदर
1: तो चलिए, सखी
0: जी
1: सहेली, आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर
0: जी
1: लिया है। तो अब एक
0: बिल्कुल
1: गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: तो आरती, आप गाने से भी देखो चार चांद लग
1: चार
0: गए
1: चांद
0: हैं
1: ना, बहुत
0: ना?
1: प्यारा गीत लगता है।
0: जी बताइए। तो देखिए, आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: काटती बहुत बुरा है
1: और काट चुकी है, मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संसार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे हमारे जितने भी श्रोता है वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोली।
0: अच्छा, ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: सद्भावना, अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि
1: जी
0: अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं, कितनी भाषाओं की ज्ञाता है। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल ही गई है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती, बड़ी बड़ी बात है कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा है। ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं, आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिले हैं।
1: बिल्कुल। तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेको।

0: झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
1: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहर है वो मिलता है,
0: एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने, पर्यावरण को लाभ भी पहुँचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती है और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज वो पैदा करती है।
0: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार है, मतलब इतने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर हैं, जैसा अभी हमने शुरू में बताया था।
0: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जांसा को 1734 में बपतिस्मा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खी और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया, और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल, और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है, और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वहां का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छरा बना रही मधुमक्खी से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक
1: वो नहीं करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस न लें, मतलब उसको डंक लगा दें आपको, हम यही कह रहे हैं, अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाक के तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है,
0: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थान पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमें

0: तिवारी
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को। तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना, और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये साड़ियाँ। और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम तीन भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली

0: तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा, तंचोई बुनाई की ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो तान बनाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
0: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: बहुत मुश्किल है।
0: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और 1 सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है
0: जी। और इसके साथ एटलस या गिल कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ, बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है, तो तंचोई जो वस्त्र है वो तटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उस तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामिति और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं या विवाह समारोह के अवसर हैं या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों सखाओं का, हमसे शेयर करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है।
0: हाँ दी
1: जी, और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना, तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोग ने कहा था कि ये श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इसे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं, मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जाते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके प्रोसेस बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से

0: शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो भाषा जानते थे
0: हाँ।
1: उसमें समझते समझ में आता है ना तरीके से जिस भाषा
0: हाँ।
1: को जानते हैं,
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा है ना, हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते
0: हाँ।
1: हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और उसके बाद ना वो हमारे दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने
1: तो
0: देखा
1: सीखना
0: होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं,
1: हाँ।
0: उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: तो आप किसी भी भाषा के गाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल, और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होगी। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो उसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर
0: आइए। जब तक आपके अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए।
0: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना
1: जी,
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है, डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल, आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर
0: हाँ।
1: दीजिए, आप खुद ही अपने आप को आपको लगे कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती
1: जी,
0: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है,
1: सबका नजरिया
0: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा आपको खोल सकता है, आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहाँ की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहाँ से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं
0: हाँ।
1: आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहाँ ब्रिज भाषा
0: हाँ।
1: क्योंकि
0: अच्छा लगा
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बहुत अच्छा लगता है, फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं।

0: बुद्धि बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना मुझे इतनी भाषा आती है, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा बोल
0: चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: ये तो बदला।
1: हाँ तो मंदा जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की हुँ? तो उसपे एक श्रोता जो है उन्होंने हमें लिख कर भेजा अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया। इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
1: वो
2: कुछ
1: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है तो
2: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो काट लेती है लेकिन वो क्यों काट रही है
1: जी,
2: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया। आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
1: बिल्कुल
2: हमें इस बात का

0: कहीं कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों का आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था कि कितनी भाषा आती है, तो एक श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एकदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा है,
0: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं रूखी हो जाती है, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संसार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए ये हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार है जिंदगी में। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती है, न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती है। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
1: भाषा भाषा है,
0: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: चलिए आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
1: भाषा कभी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना,
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना, इसमें आ रहा है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहाँ समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहाँ सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इस सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने ये चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: जी तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तेल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डाल धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छली में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंथ लीजिए और छने में गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है इसका, मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर डाल लीजिए। आपका जो

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खड़ा होता है। वो लिखते हैं शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाते, समय और समाज की आवाज भी जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सखाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ
2: होना चाहिए। गुड़ घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए और सौंफ 1 चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच।
1: हिलोरा है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
3: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लगा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ
2: करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना।
3: वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आपके सामने आ गया। जी खुश हुआ।
1: क्या बात है।

0: एंटोपिल से किंग सर्कल आना, मतलब पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन में।
1: हाँ, मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ,
1: ढाल लेता
0: फिर
1: है
0: वो लोग अपने आप आपको उतार दें।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार देंगे।
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में ये उस वक्त किचन
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: इसको
0: करते थे लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो और
1: बिल्कुल
0: वो तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा। और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा। अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यारा,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने उनको
0: प्यारा।
1: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी
1: तब
0: सर,
1: मैं था
0: तो
1: नहीं शहर में
0: भूपी जी मतलब

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मैं मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से उन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट शो भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उस पर जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत चाहिए, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया।
0: आपकी रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी
0: बजी
1: जी जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी जो यहाँ अर्शक सर पर हादसा होना सर, तो पंकज जी से जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील,
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा उसमें कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था, नीचे
0: अरे
1: नहीं
0: बाप रे
1: था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इन्होंने
0: में
1: गाया था।
0: गाया
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद कर चुके सब कुछ, ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, वो तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने ये बात
1: ये मेरा,
0: कही
1: और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ, तो उसका नाम है अजय।

0: जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
1: हाँ, बिल्कुल
0: सीरियल है ना,
1: बिल्कुल, बड़ा नाम है अजय
0: हाँ
1: कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने मेरा ये कमेंट था। अच्छा
1: जी
0: दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज उदास साहब ने सूरत उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को एक शायर रहे हैं गुजराती के बड़े
1: जी
0: शायर रहे हैं तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया वहां गाने गए। मजरूर सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे तो मजरूर साहब बैठे थे सामने तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरूर साहब ऑडियंस में बोलते हैं हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो वो कहते हैं फिर सुनाओ तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया या सुना दिया। हाँ ये तो सुर का इधर उधर नहीं फिर सुनाओ फिर एक बार फिर उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह। तो फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था
1: जी
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी तो ये बहुत अच्छी गजल है अलग गजल है उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरू
1: मजरूर
0: सुल्तान
1: जैसे
0: और साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद
1: शायर की बात
0: है ना,
1: है ये,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं अब।
0: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा सारा तो शहरी का ही रहा
0: जी।
1: और जग्गी जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ।
0: उससे
1: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में किसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का ऑल इंडिया मुशायरा होता सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
1: मशहूर
0: जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने जो पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त से अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, मुमताज राशिद और सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद, निदा साहब उसके सदारत कर रहे थे
0: जी।
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था बिहार नेहरू
0: अलग ही होता था,
1: अलग ही हुआ करता था
0: जी।
1: हॉल खचाखच भरा हुआ तो सो, और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा तो निदा साहब ने मुझे उसी ओपन के लिए बल्कि यूं कह लीजिए।
0: अरे बाप
1: तो शुरुआत एक दो मुशायरों में
0: निदा साहब की अपनी आदत थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने माइक पे बुलाया मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
0: जी
1: है ना, भरपूर ऑडियंस पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी, तो उस वक्त दाद देने का ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर बैठे थे, मैं होता है तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा प्यार हुआ तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, अब तो शुरुआत कर रहे थे जबकि जी
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा हो गया। और ये ऐसे फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन रहा हूँ जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी।
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
0: हाँ हाँ,
1: और जगजीत सिंह साहब ने तो धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो,

0: एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
1: जी, जी,
0: वो चले गए
1: जी।
0: वो एल्बम रिलीज हुआ, चिता जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
1: जी।
0: ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस वजह से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरे आसमान से आगे।
1: बिल्कुल।
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें। हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप हैं तो इसलिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम किताब लेके आ जाना अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी जी जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर छपे रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडिशन बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास है क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इतफाक है कि वो हमारे इसमें मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी वो उसका रिबन खोला ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुक गए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है देखिए स्टेज हाँ, है पूरा
1: और पूरा हॉल
0: पूरा हॉल है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है घा रहे हैं वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि एक माइक इधर लगाइए स्टैंडिंग माइक दीजिए। हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं कल्पना नहीं और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए जाने की उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे।
0: उससे पहले महफिलों में गा चुके थे मतलब
1: जो
0: पसंद थी गजल तो सारे तो वो गजल पढ़िए जाने की उड़ान बाकी। तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी
1: जी।
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी, जी,
0: आज
1: जी।
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसा सम्मान।

0: जाने कितनी उड़ान, और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस
1: क्या बात है,
0: आसमान
1: बाकी है।
0: बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। रिजल्ट एक और शेर खास सुनाना चाह रहा हूं,
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में
1: जबान बाकी है।
0: जुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार।
0: है।
1: विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे उजाले,
0: उनकी
1: उनकी
0: यादों
1: यादों
0: में
1: के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है। सखी
0: सखी
1: सहेली आपके
0: सहेली,
1: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से,
1: जी
0: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल,
0: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी जी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शिटी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक
1: सब
0: तरह से,
1: चीजों को
0: हाँ
1: संभालते
0: सबको संभालते थे, तो एक अच्छी टीम थी
1: जी,
0: जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
1: बिल्कुल
0: ऑपरेट को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
1: जी,
0: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया,
1: बिल्कुल। और हर
0: ऐसा कम
1: रोज आप
0: होता
1: एक
0: है,
1: नई चुनौती
0: ऐसा
1: सामने
0: कम
1: रखते
0: होता
1: थे
0: है।
1: जी।
0: तो मैं हम तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
1: नौशाद
0: साथ
1: साहब आ रहे
0: कहीं,
1: हैं, खयाम साहब आ
0: हाँ
1: रहे हैं
0: खय्याम साहब आ गए, लक्ष्मी प्यारेलाल जी आए,
1: जी,
0: आनंद जी आए, है
1: बिल्कुल
0: ना, अनु मलिक भी आए, उनको नहीं आए यहाँ पे तो
1: बिल्कुल,
0: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
1: रवि जी
0: ना,
1: आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: खय्याम साहब,
1: खयाम साहब आए, और
0: हाँ
1: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है।
0: हाँ तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: मुझे याद है कि
0: हमारे
1: खयाम
0: मेहमान,
1: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
0: हाँ
1: और वहीं 1 घंटे बात हो रही
0: हाँ हाँ उनको
1: है।
0: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था,
1: जी
0: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का, और
1: बिल्कुल
0: उनको शौक भी था, बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों को भी हमने ये भी सोचा कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध दिया, 2 घंटे में बांध दिया, उनको कभी सरगम के सितार, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
1: ज्यादा
0: उनके
1: कर
0: ले
1: सकते
0: सकते हैं
1: हैं
0: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार ही मिलते हैं, ये लोग
1: जी,
0: अब कहाँ आए अब इस दुनिया
1: बिल्कुल
0: में, इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं
0: किसी के पास नहीं है, वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग सारी की सारी, जब
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं, है
1: जी,
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप उस

0: सारा कुछ, मतलब पूरी इनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर
0: एक से बढ़कर एक हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो, सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती स्टूडियो में हाजिर, पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अच्छे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी,
0: तो बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए।
1: जी जी।
0: तो ये भी हुआ है, और खासकर जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता
1: जी।
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया, पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है, और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: हाँ, रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे, एमए
0: जी
1: हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक क्लास में थे, और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दो ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है, लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी जी
1: प्रपोजल नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन-लॉ, फादर इन-लॉ जापान में रह रहे, ये हमारी जो सास है, मदर इन-लॉ जो है, वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी है बताने की, और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, तो ठीक है, तो हमने कहा कि आर्य समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं, क्योंकि अपने कॉलेज के जमाने से अपनी एक्टिविटीज की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर साहब चहेता बन गया था, मतलब यह था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे दो तीन जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: जी हाँ
1: कि हम, मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ हाँ हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: ओके नहीं
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: ये सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे, तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़ दौड़ जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे, तो
0: हाँ
1: मुझे यहां से ले जाओ,
0: अरे बाप रे
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूं मैं अब,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मुझे ले जाओ यहां से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया हूं उनके, और
0: गजब
1: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
0: हाँ
1: हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय की सब कुछ हुआ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए,
0: हाँ
1: हम इसको ढंग से करते हैं, इसमें करेंगे
0: हाँ
1: सब कुछ, लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, नहीं
0: ये नहीं हो रहा
1: ये
0: है।
1: नहीं होने देंगे,
0: हाँ
1: मैं भी चलूंगी।
0: गजब।

0: तो फिर हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ हुआ। तो उन्होंने वही कहा थोड़ा हमें वक्त दीजिए, हम बैठ से करते हैं, इसमें करेंगे
1: हाँ
0: उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, नहीं
1: ये नहीं हो रहा
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे,
1: हाँ
0: मैं भी चलूंगी।
1: गजब, इतना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
0: जरूर।
1: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुना रहा हूं।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा
1: जिंदगानी,
0: क्यों नहीं होता,
1: वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के कितने
1: कितने हिस्सेदार हैं।
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह
0: मेरी एक
1: वाह
0: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर,
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के, एक आंसू
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: वाह,
0: एक आंसू
1: पूरी कागज पर
0: कोरे
1: गिरा,
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
0: एक
1: बात है
0: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना कोई
1: गम छुपाना,
0: मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
0: गम
1: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या
0: छुपाना
1: बात है
0: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात
0: शुक्रिया।
1: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है रजा लाइब्रेरी,
1: जी जी बिल्कुल
0: उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
1: जी जी
0: मतलब किसी
1: डिफिकल्ट
0: लाइन।
1: होता है
0: हाँ,
1: ये,
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
1: क्या बात है
0: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
1: वाह
0: तो इसे मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
1: इरशाद इरशाद।

0: खुद को समेटते हैं, यहां से
1: क्या बात
0: वहां
1: है,
0: से
1: क्या बात, क्या बात है।
0: हम खुद

0: हूँ। और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूँ, इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब
1: जी,
0: एक होता है शराब और एक होता है शराब, जिसे मृगमरीची का मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है दिखता है होता नहीं,
1: होता नहीं
0: है ना, मरुस्थल में
1: आग का धोखा है,
0: हाँ पानी का धोखा आग का धोखा वो सब है। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताए टूटे हैं कितने कहां से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यार,
1: वाह वाह, अब तो शराब से ही
0: शराब ही से बुझाने लगे प्यास।

0: और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के मेहमान।

0: नंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभावी वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधे नगर अकोला।

0: महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का लिखते हैं।
1: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
1: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की
1: जी।
0: तो मनीष जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी श्रोताओं कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं अपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर दिखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
1: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
1: श्रोताओं अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं की धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
1: जी
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
1: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
1: दूसरा है गोल्डन मंकी। बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगल में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
1: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
1: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
1: जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
1: जी
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: आदर्श पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: आदर्श

0: पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी, ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा, अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लगी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी, ये तस्वीर तब ये जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
1: हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों? आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा सुधाजी बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चल बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ, अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माई काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी। वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
0: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ
0: देखभाल, वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटा। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा जी? अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
0: चलिए दादाजी।

0: सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ, अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।

0: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
1: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा लालू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूँ?
0: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं?
1: दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगे भला?
2: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
0: हाँ दीदी,
2: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
0: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: तुणुतले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
3: आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय बर्तमान संध्या 5:30 बजे 30 मिनट हो जाउ छै परवर्ती प्रसारण प्रचार कर छौ नाटक कर प्रहलाद नाटक दशम भाग परिवेशन करते श्री गुरुनाथ सभा और साथी

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: तुणुतले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
3: आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय बर्तमान संध्या 5:30 बजे 30 मिनट हो जाउ छै परवर्ती प्रसारण प्रचार कर छौ नाटक कर प्रहलाद नाटक दशम भाग परिवेशन करते श्री गुरुनाथ सभा और साथी
4: एंड द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
5: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
6: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है, चेट्टीनाड सीमेंट पर
4: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले। चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

भगवान को भगवान हमारे तो अच्छा हम तो हबे तू तो हम खरा खंडा ना

0: कीट रूप धरि पूर्वे महर भद्र कुरे रे गंगारा
1: हरि जय दलाता
0: तहार कीर्तन्य कुरे निवेशी अछु मन को दुष्ट दुर्बुद्धि ठाकुरे आ

कल्लकनं सहस्रगिरणं द्वारिप्रतिहारकं चन्द्रछत्रधरं समीरवरं तन्मध्यमद्गुहानिवासक्यपरिनिष्ठितं पूतवहं किमहं रक्षसे

తండ్రువైన

धपा मापानी धपा।

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है।

पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्तऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे। शिव जी के सेवकों ने स्वामी का श्रृंगार करना आरंभ किया। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर चढ़ाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंकण, शरीर पर विभूति का लेप और वस्त्र के नाम पर व्याघ्र चर्म, सुंदर भाल पर चंद्रमा सुशोभित हुए, सिर पर गंगावतरण, तीन नेत्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

0: यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: इटाली प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी कहिछन्ति उभय देश मध्ये बंधुता सम्मान एवं पारस्परिक विश्वास उपरे आधारित भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में जहाज चलाचल स्वाधीनता सुनिश्चित करबा उपरे से गुरुत्वारोप करिछन्ति। उभय पक्ष भारत इटाली संपर्क को सुदृढ़ करबा पई व्यापक विचार विमर्श करिछन्ति बोली प्रधानमंत्री मेलोनी कहिछन्ति। श्री मोदी भारत और यूरोपीय संपर्क को सशक्त करबा क्षेत्र में इटाली समर्थन को उच्च प्रशंसा करबा सहित उद्यमान प्रजुक्ति विद्या विनिर्माण एवं निरंतर विकास क्षेत्र में सहयोग उपरे गुरुत्वारोप करिछन्ति। आमेरिका और ईरान संघर्ष जो सृष्ट वैश्विक अनिश्चितता सत्वे भारत विश्वर द्रुततम अभिवृद्धिशील प्रमुख अर्थनीति रही जातिसंघ आकलन होती। चलित बर्ष अभिवृद्धि 6.4% रहीपे जातिसंघ कही। विश्व अर्थनैतिक परिस्थिति और संभावना संक्रांत प्रकाशित रिपोर्ट उपर आलोकपात कर गणमाध्यम को सूचना दे जातिसंघर वरिष्ठ अर्थनीतिज्ञ इंगो पिटले दृढ़ खाउटी चाहिदा निवेश एवं सेवा रप्तानी रे अभिवृद्धि भारत अर्थनीति को सशक्त करुछि बोली कहिछन्ति। जातिसंघ अर्थनैतिक विश्लेषण एवं नीति विभाग निर्देशक संतनु मुखर्जी भारत विविध अर्थनीति ढांचागत संस्कार एवं उन्नत टिकस राजस्व को एक प्रमुख शक्ति भाव अभिहित करिछन्ति। एथिसह भारत विविध शक्ति उत्स दृढ़ विशोधन क्षमता बृहत वैदेशिक मुद्रा भंडार एवं आर्थिक नमनीयता मध्यप्राच्यर उत्तेजना एवं हरमुज प्रणाली अवरोध जो वर्धित तैल मूल्य प्रभाव को ह्रास कर जातिसंघ रिपोर्ट प्रकाश पाई। नीट यूजी पुनः परीक्षा को स्वच्छ एवं निरपेक्ष भाव परिचालना सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गुरुत्व प्रदान कर नूआदिल्ली आज केन्द्रीय सुरक्षा एवं गोईंदा संस्थागुड़ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अध्यक्षता कर श्री प्रधान बैठक में बेनामी अनलाइन गोष्ठीगुड़िक द्वारा प्रतियोगितामूलक परीक्षा संपर्कित भूल सूचनार व्यापक प्रसार उपर चिंता प्रकट करपरी नेटवर्कगुड़िक दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करने को श्री प्रधान निर्देश देते। सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफर्म शिक्षा मंत्रालय जातीय परीक्षण संस्था एनटीए एवं आईन प्रवर्तन संस्थागुड़िक सहित समन्वय रक्षा कर कार्य करने उचित बोली श्री प्रधान मत देते। एथसह से कहते यहाद्वारा भूल सूचनार प्रसारण को शीघ्र रोक परीक्षा परिचालना सुव्यवस्थित हो पार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिछन्ति विकसित भारत लक्ष्य हासिल करिबा एवं समाज को प्रगतिर शीर्षरे पहुंचाइबा पई भारतीय प्रशासनिक अधिकारी मानकु समस्त प्रतिकूल परिस्थितिर मुकाबला करि आगुकु बढ़िबाकु पड़िबो। राष्ट्रपति भवन रे आजि 2024 बैचर भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी मानकु श्रीमती मुर्मू भेटिथिले। अधिकारी माने भविष्यत रे विभिन्न क्षेत्र रे काम करिबा एवं विशेषज्ञ दर नेतृत्व नेबार अनन्य अभिज्ञता हासिल करिवे बोली श्रीमती मुर्मू कहिछन्ति। जनस्वार्थ क्षेत्र रे प्रतिष्ठित सरकारी व्यवस्था सह संबंध रखी ठीक निष्पत्ति नेबा उपरे राष्ट्रपति प्रशासनिक सेवा अधिकारी मानकु परामर्श दिछन्ति। अटो नवसृजन अभियान रे नीति आयोग जम्मू एवं काश्मीर रे 500 नूतन अटल टिंकरिंग लैब

0: नमस्कार भाईना।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: आ कौन बा कौन सब खबर होनु
1: भौनी? खबर माने खरा गुतो कडे बाहरी होनी
0: नाही। सत कथा एबे अमावस्या परठु तो बेसी खरा होची भाईना। आ
1: बाहरी होनी संध्या हेले कोन होची मु टिके बाहरुची जमी जवाडे आ हमर चासी भाई मानु सहित कथाबार्ता करियो ली संध्या लो गोला लगु गुटे बढ़िया दिन छै। आजि मोर नजर को आसला घटना कोन कि हमर जो चासवास करछंती
0: आज्ञा
1: सेथिरे जने गुटे फार्म हाउस करिके सुंदर भाव रे सा भितरे जिया खत प्रस्तुत करछने।
0: हां
1: ताको पुणे आथरे व्यवसाय करछने
0: माने एपटे चासवास करछने एपटे जिया खत हले व्यवसाय करछने के।
1: हां
0: आदि पैसा लाभ जा गुले दरकार गना
1: जैविक प्रणाली रे चासो जहा आदाय करछने सब जैविक प्रणाली रे।
0: हां
1: ता संगरे पुणे ई जो खत को व्यवसाय करके
0: माने खत तो निज जमीन रे लगछने पुणे व्यवसाय करछने हो
1: व्यवसाय करछने
0: किन कोन प्रस्तुत करछने पचारलनी
1: से होछती हमरो छत्रपुर ब्लॉक अंचल रो तेलापली गां रो।
0: हां
1: जणे चासी चंद्रशेखर आचार्य
0: ओहो
1: से जने शिक्षित।
0: हाँ
1: शिक्षित हेकि मध्ये उच्च

0: राज सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: बेटा शौर्य, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
2: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
1: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
2: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
0: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत हुई है, जैसे यादें और चेतनाथ सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट चॉइस।
3: हर घर में कई कहानियां होती हैं, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे। हर दीवार, हर कोना आस्था बयां करता है
0: और इन पलों की मजबूत नींव है चेतनाथ सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
4: अच्छा दास बाबू, आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट, हेले ए पोंते एते स्ट्रांग केम अछि।
5: अरे एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतले मोर विश्वास रखतिली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
6: शक्ति जहां वर्ष वर्ष रे बरम पीढ़ी पई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
7: सेको सोलार एबे बिजली बिल रो टेंशन सेस। पीएम सूर्य घर योजना अधीन रे 3 किलोवाट टाटा सोलार सिस्टम मात्र 72000 टका रे सब्सिडी अलगा। आज ही फोन करंतु 7328009100 जो सेवक सोलार आपन को घर रो सोलार समाधान।
8: आकाशवाणी रणपुर परवर्ती प्रसारण सुनंतु। माननीय केंद्र कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री अध्यक्षतारे भुवनेश्वर होता पूर्वस्तरीय बैठक एक बेतार बरणी
9: पूर्वांचल जौन आंचलिक कृषि सम्मेलनी 2026 संपर्क में बेतार बरणी उपस्थापना समीर मिश्र, वैषयिक सहायता त्रिलोचन बेहरा और सनातन मुर्मू, प्रयोजना राजीव कुमार महंत।
10: नमस्कार श्रोताबंधु, प्रस्तुत करुछु गतकाली भुवनेश्वर ठारे आयोजित पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलनी 2026 रो बेतार विवरणी। गतकाली भुवनेश्वर रे केंद्र कृषि ओ कृषक कल्याण मंत्रालय ओ ओडिसा सरकारक मिलित सहयोग रे अनुष्ठित होइथिला पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलनी 2026। सम्मेलन को पूर्वान्न 10:00 रे माननीय केंद्र कृषि ओ कृषक कल्याण तथा ग्रामांचल विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी प्रदीप प्रज्वलन करी शुभारंभ करिथिले। कार्यक्रम आरंभ रे वंदे मातरम गान करा जायथिला। परे परे भारत सरकारक कृषि ओ कृषक कल्याण विभाग सचिव श्री अतीश चंद्र स्वागत भाषण प्रदान करिथिले।
11: सर्वप्रथम मैं इस ईस्टर्न जोन की इस जोनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में आप सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस आयोजन का प्रेरणा हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने दी है कि हम लोग जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करते हैं उसे पहले क्यों नहीं हम लोग जोन्स में जाके जो हमारे राज्य हैं उनके साथ मिलकर विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पे जो कृषि से संबंधित है उस पर चर्चा करें। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं उसको आपके सामने रखें, उसमें जो प्रगति हुई है, जो इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं और यहाँ की जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करें और साथ ही साथ जो राज्यों में इनोवेशन हो रहे हैं, जो उन्हें अच्छे काम किए हैं उसको भी प्रस्तुतिकरण का अवसर मिले ताकि क्रॉस लर्निंग हो सके, राज्य भी सीखे और केंद्र भी सीखे और जो उसमें ऐसी चीजें हैं जो दूसरे राज्यों में स्केल अप की जा सकती है तो वो संभावनाओं पे भी यहाँ पे चर्चा हो।
10: यहाँ पर माननीय केंद्र मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पूर्वांचल राज्य मानक कृषि विकास एवं कृषक मानक आय वृद्धि पाई केंद्र सरकार विभिन्न योजना संपर्क में आलोकपात कर अभिभाषण कहले

आज भी भारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। हम 140 करोड़ के का देश है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 140 करोड़ भारतवासियों को भरपूर खाद्यान्न कैसे मिले। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ, पांचों राज्यों के मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। अन्न का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। अब धान के उत्पादन में तो उड़ीसा हो छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। बिहार कृषि रोड मैप बनाने में अग्रणी राज्य है। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र की कृषि को और आगे बढ़ाने में। और आज हम इसलिए बैठे हैं, कृषि के सामने जो चुनौतियां हम उन पर भी विचार करेंगे, हमारे किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उन पर भी विचार करेंगे। किसान मूल है खेती का, लेकिन जो सामने चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का से पार पाना है, उसके लिए प्लान करना है, योजनाएं बनाना है, उन योजनाओं को ठीक से इंप्लीमेंट करना है। देखिए तीन प्रमुख लक्ष्य जो केंद्र में हम रख के काम करते हैं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप। नंबर एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 140 करोड़ भारतवासी अन्न के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए दुनिया के किसी देश की तरफ हाथ ना फैलाए, क्योंकि आज कोई भरोसा नहीं कि वैश्विक परिस्थिति कैसी हो जाए, कल कोई देने से इनकार कर दे तो क्या कर लोगे आप। जैसी परिस्थितियां आज, हमको समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए हम आत्मनिर्भर बने, नहीं पसारेंगे हाथ, हमारे देश की जनता का पेट हम भरेंगे, उसके लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दलहन हो, तिलहन हो, पैदा करेंगे हम। दूसरा, खाद्यान्न तो चाहिए, लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इसे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है, किसानों की बेहतर आजीविका, आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है वो सुख जीवन जिए, अन्नदाता सुखी भवा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, धन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं उस पर बात करना। हमारे सामने जो समस्याएं हैं बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक जिस पे हम सबको मिलकर काम करना है, वह हमारे किसान के पास लैंड होल्डिंग कम है, जोत के आकार हमारे छोटे हैं। पूर्वी भारत की आबादी घनी है, अब आप इन सब राज्यों को देख लें, घनी आबादी है तो छोटी छोटी खेती है, तो इस छोटी खेती में कैसे फायदे की खेती वह। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, अनाज के साथ थोड़े से मैं फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। आज दूसरी हमारे सामने चुनौती है, और वो चुनौती है हमारी खेत बचाने की। केमिकल फर्टिलाइजर का यद्यपि पूर्वी भारत में कंपेरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी कई जगह असंतुलित उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तत्व कौन से जाने बिना डाले जाओ खाद, उसके कारण खर्चा भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाए, प्रेरित करें, जो जरूरी है वो डाले, अनावश्यक डाले से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्पादित करने से इनकार कर देगी। तो हमको उस दिशा में जाना है। प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है। तीसरी चीज, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा, सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद। 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की डीएपी की बोरी, खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना, इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से महंगा हो रहा है, खाद मिलने में कठिनाई जा रही। मुझे बता दो, कोई संकोच नहीं है, भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से झाम मिल वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड। कई जगह पर्याप्त तत्व होते ही नहीं और भरी बोरियों में दे दिया किसान को, किसान डाल रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान, नकली कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब ये पूर्वी क्षेत्र जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं, और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे, तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के पीएम आशा के अंतर्गत। मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप, आपके यहां

0: समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए। आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अब ही आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर आईडी तेजी से बनाने का काम चल रहा है। ये फार्मर आईडी बहुत जरूरी है। फार्मर आईडी का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए। उसका फायदा ये होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ वो ले आ वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो। फार्मर आईडी अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, एक मिनट में दो मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चला रहे थे, आनंद आ रहा था, इतनी आम की किस्में उड़ीसा ही में पैदा हो रही है। क्लीन प्लांट मिले इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पौधे कैसे मिले, नर्सरियां कैसे लगे, तो इन सब क्षेत्रों पे हमको काम करना है। और इसलिए हम आज साथ बैठे हैं, साथ बैठ के जब हम विचार करेंगे तो संपूर्ण विचार होगा। पूरे देश का एक करते तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए विचार मन में आया कि रीजनल करें, पहले क्षेत्रीय करें, तो एक साथ चार चार पांच पांच राज्य जाएंगे तो समय ज्यादा मिलेगा, हम लोग प्लान ठीक कर पाएंगे। तो हमको प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी कि अगर वैसी परिस्थिति है तो फिर कैसी फसलें हम लगाएं कि जो अगर बारिश में गैप भी हो तो टिक जाए। उड़ीसा जो तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है कृषि के क्षेत्र में भी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी, मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी को आज विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में आपने जो सहयोग किया और कहा कि आइए जगन्नाथ महाप्रभु की धरती पर आपका स्वागत है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सम्मेलन ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी राज्य चाषी मान कल्याण आधुनिक ज्ञान कौशल व्यवहार ओ कृषि भित्तिभूमि सुदृढ़ीकरण उपरे गुरुत्व आरोप करी निज अभिभाषण रे कहले,
2: जय जगन्नाथ। आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीयुक्त शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय केंद्र कृषि और किसान कल्याण राष्ट्रमंत्री श्रीयुक्त रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राष्ट्रमंत्री भागीरथ चौधरी जी, मेरा सहयोगी ओडिशा सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री श्रीयुक्त कनक वर्धन सिंह जी, माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार श्रीयुक्त राम विचार नेताम जी, माननीय कृषि मंत्री बिहार श्रीयुक्त विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय खाद्य जोगाण मंत्री पश्चिमबंग सरकार श्रीयुक्त अशोक कीर्तनिया जी, केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण सचिव श्रीयुक्त अतीश चंद्रा जी, डायरेक्टर जनरल आईसीआर डॉक्टर मांगीलाल जाट, विशेष अतिथिगण, अधिकारी वृंद, कृषि वैज्ञानिक, सभी भाइयों और बहनों, मीडिया फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको श्री जगन्नाथ जी की धरती पर स्वागत है। पूर्व क्षेत्र कृषि सम्मेलन 2026 के लिए ओडिशा को चुना गया है। इस महत्वपूर्ण एवं गरिमामय मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज वहाँ पूर्वी राज्यों के लिए कृषि क्षेत्र के भविष्य का एक रोड मैप तैयार करने के लिए व्यापक चर्चा वहाँ दिन भर होगी और इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और विशेषज्ञों को, जब सारी अधिकारीगण वहाँ उपस्थित रहे तो मैं आप सब लोगों को इसी आधार पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ एक विशेष परिस्थिति में सम्मिलित हुए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पिछले 2.5 महीने से भी ऊपर मध्य राज्यों में युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है। पेट्रोल डीजल की संकट के साथ ये कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद उत्पादन के लिए जरूरी कच्चा माल उत्पादन में भी परेशानी आज हम हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको इसी विषय पर सतर्क किए हैं और हमारे किसान समाज को खाद का इस्तेमाल कम करने के लिए आह्वान दिए हैं। जितना जरूरी है इतना ही खाद व्यवहार करना चाहिए। हमारा किसान भाई और बहनों को भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को गंभीरता के साथ विचार करना आज का दिन जरूरी है। हमें प्राकृतिक कृषि को अपनाना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी धीरे धीरे प्रदूषित होने जा रहा है। जैसे माननीय

प्रधानमंत्री जी कहते हैं रासायनिक खाद के उपयोग से धरती माता को बहुत पीड़ा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कृषि क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। आज भारत लगभग सभी प्रकार कृषि उपज में आत्मनिर्भर है। आज हमारा देश सिर्फ कंजप्शन करने की अर्थनीति नहीं है, आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी करता है। ये संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी विजन और इस विजन को सार्थक करने के लिए विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन से। माननीय शिवराज जी खुद एक किसान है, इसलिए हम सब लोग आज बहुत गर्व की बात करते भी है। इसलिए किसानों की भी बहुत जरूरत है, वो भी बखूबी जानते हैं। पिछले 2 साल से कृषि मंत्री के रूप में वो कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व अवदान आज सारा देश को दे रहे हैं। ओडिशा मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है, कृषि यहाँ के लोगों की जीविका और सुरक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है कृषि। जैसा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान जी के कुशल नेतृत्व में राज्य के कृषि विकास के लिए हम पूरी तरह आज प्रतिबद्ध हैं। पूरे समाज तथा सरकार के सम्मिलित दृष्टिकोण के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र को अधिक समावेशी और जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए कोई नए और प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम हमारे राज्य तरफ से हमने अभी शुरू किए हैं। हमारा सरकार के कुछ प्रमुख और क्रांतिकारी पदक्षेप बारे में निश्चित रूप से हम दिस शब्द कहना चाहूंगा। भारत सरकार की दाल या पल्सेस उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मिशन फॉर आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस की शुरुआत की है। अरहर उरद और मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना, खेती का विस्तार करना, कटाई के बाद के स्टोरेज और मार्केटिंग लिंकेज को मजबूत करना इसका पूरा लक्ष्य है। ओडिशा में वर्तमान 21 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर दाल की खेती की जा रही है और इस प्रकार भारत सरकार ने खाने के तेल के उत्पादन बढ़ाने के लिए साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है। इसी आधार पर जो माननीय कृषि मंत्री ने बोले दलहन तिलहन अर्थात पॉलिसीड और प्रोसेस में हमको कैसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हुए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसी आधार पर हमको आज का दिन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कैसे सारी किसानों को इसी साथ पर ले जाएं और हमको इसका बहुत जरूरी भी है। आज हमने जैसे ओडिशा में हमने किसानों को बोनस भी बोलते हैं, लेकिन हमने उनको इन प्रतिष्ठान के नाते पैरी पेकरमेंट में पर क्विंटल में पहले से शुरुआत से हमने 800 रुपया दिए हैं और MSP के साथ मिलाते हुए पर क्विंटल में 3,100 रुपया देने के बाद और भी हमने रबी फसल में भी और खरीफ में भी दे दिए। और जैसे आज खेती बाड़ी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी PM किसान सम्मान निधि के नाते हमने जोड़ दिए हमारा और एक CM किसान सम्मान निधि, तो 6,000 PM किसान और 4,000 हमने दो किसी में CM किसान दे दिए और देते हुए 10,000 पर ईयर में हमने किसानों को दे रहे हैं। इसी आधार पर सबसे ज्यादा सहयोग किसानों के लिए हमारा उड़ीसा सरकार ने आज कर रहे हैं। इसी आधार पर आप देखिए रबी फसल में इनपुट असिस्टेंट कई राज्य सरकार नहीं देता है और हमने एक डिसीजन ले लिया कई गुना ज्यादा करने के लिए जो मिशन पर आप आज काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उड़ीसा में सियरना योजना के तहत

0: कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ तक सब्सिडी दे रहे हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में निवेश करें। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और इस ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस की सफलता कामना करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। बंदकल चरणी।
1: उद्घाटन उत्सव पर द्वितीय अधिवेशन कृप क्षेत्र विभिन्न राज्य सरकार प्रतिनिधि मैंने भिन्न भिन्न कृषि भित्तिक विषय उपर विशद आलोचना पूर्वक से अनुभव और आभिमुख्य उपस्थापन करते। ओडिशा सरकार तरफ कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग सचिव श्री सचिन रामचंद्र जादव कृषि संप्रसारण उपरूर कार्यक्रम संपर्क में तथ्य उपस्थापना करते। पश्चिमबंग सरकार पक्ष कृषि विभाग प्रमुख सचिव श्री ओंकार सिंह मीना मंजी उत्पादन होता सर्वोत्तम पद्धति संपर्क में आलोकपात करते। झारखंड सरकार तरफ कृषि विभाग उपनिर्देशक श्रीमती कंचन कुमारी एफपीओ लेड भैल्यू चेन्स एंड एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम सर्वोत्तम प्रयास संपर्क में उपलब्धि उपस्थापना करते। छत्तीसगढ़ सरकार पक्ष कृषि विभाग सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनार सफल रूपायन संपर्क में आलोकपात करते। बिहार सरकार पक्ष कृषि विभाग निर्देशक सौरभ सुमन जादव राज्य में मका उत्पादन और बजार संजोग होता सर्वोत्तम प्रयास संपर्क में आलोकपात करते। द्वितीय अधिवेशन शेष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिर्देशक श्री मंगीलाल जाट समन्वित कृषि प्रणाली संपर्क में निजर प्रस्तुति उपस्थापना करते। अपराह आयोजित तृतीय तथा उद्यापन अधिवेशन भारत पूर्व क्षेत्र विभिन्न राज्य आसी मान्य मंत्री सेमानकर वक्तव्य रखिथिले। एही क्रमरे पश्चिमबंग सरकारक खाद्य और जोगाण मंत्री श्री अशोक कीर्तनिया निज वक्तव्य रे कहिले,
2: मंत्री का पास एक रिक्वेस्ट है हमारा, जो हमारा फिशरमैन लोग है, आप उसका ऊपर में थोड़ा ध्यान देगा जरूर। और हमारा जो बंगाल से जो ऑफिसर लोग आया, हम उन लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करके जा रहा है, इसे ये डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ हर सुविधा पश्चिमबंग का आम जनता को मिलेगा और जितना जल्दी हो सकते हमारा बंगाल को जो जो डिमांड है माननीय मंत्री जी को आप लोग लिख कर देगा। पश्चिमबंग का आम जनता तरफ से हम यही रिक्वेस्ट फिर भी करके जा रहा है, माननीय मंत्री जी हमारा ये डिमांड जरूर पूरा करेगा एवं अगले 5 साल में हम वादा करके जा रहा हूँ इसे बंगाल को हम लोग उस जगह में पहुंच देगा जो जाएगा एक टाइम फार्मर लोगों का इंडिया में था।
1: बिहार राज्य माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा निज वक्तव्य रे कहे,
3: आज एग्रीकल्चर पर हमारा कल्चर देश का निर्भर करता है और यह कल्चर कई संदेश भी देता है, कई भावनात्मक जुड़ावों को आज हम जय जगन्नाथ का जी का दर्शन करते हैं, वो तो भी एग्रीकल्चर के प्रसाद से एकादशी जैसे व्रत में भी आज हमारा वह प्रसाद चावल का धान का जिस तरह से जुड़ाव होता है ये लगाव हमारे सांस्कृतिक विरासत को ही बताता है। हम जिस राज्य से आते हैं वह राज्य जनसंख्या में घनत्व के मामले में देश से सबसे ज्यादा, पहले 1106 था, अब लगभग 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है, जबकि देश में यह 400 के लगभग है। जमीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, घनी आबादी होने के कारण जमीन की कीमत जान से ज्यादा है और वह आजादी के बाद संयोग से बड़ी आबादी हमारा बिहार बंगाल उड़ीसा एक साथ था। आज कई मामले को हमने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में देखा, एक नया अभियान भी शुरू किया।

0: रहेगा तो हम बलवान रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। खेत को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव है जब हम जैविक खेती के लिए प्राकृतिक खेती पर हम जोर देना शुरू करेंगे। हम पदाधिकारी भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब तो आप श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो नेचर है उस नेचर को पहचाने हैं और उस नेचर के अनुसार जमीन पर काम करने का कोशिश कीजिए।
1: शेषरे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग जुग्म सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल धन्यवाद अर्पण करते।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उड़ीसा सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी आगंतुक मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण सहित सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत हृदय से आभार। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।
1: एटी शेष करछु गतकाली भुवनेश्वर ठारे आयोजित पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2024 रो बेतर विवरणी। नमस्कार।
3: आकाशवाणी ब्रह्मपुर समर्थन रात 8:30 कार्यक्रम प्रचार हो मंडल 100.6 मेगाहर्ट्ज स्वतंत्र प्रचार हो गत ओडिया गीत।

0: শুনুন লিখিতটি পড়ে আধুনিক গীত আকাশবাণী ব্রহ্মপুর সমর্থন রাতে 8:45 হচ্ছে। পরবর্তী কার্যক্রম সমাচার সন্ধ্যা রিলে করে প্রচার করছে আকাশবাণী দিল্লির।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती

0: टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी सारा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्हें इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पर

की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरला, माहे, दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि

0: और फिर भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जूली फिल्म के गाने से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, संगीत राजेश रोशन का, बोल आनंद बख्शी के।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: लीजिए सुनिए अनिरुद्ध फिल्म में किशोर कुमार को। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है,
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: कर का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी लिखा गीत सुना, आवाज किशोर कुमार की थी, फिल्म का नाम था प्रार्थना।
1: छाया गीत
2: लग जा गले,
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में,
1: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे हैं खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो आई जंजीर की झंकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: ईश्वर।
1: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत

गिरीश जब 14 बरस के थे तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, यह वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिली थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित यह नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना

सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सहित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवन का निर्माण और दूसरी ओर एस एल भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंगा अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनरि मग्ने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ति, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: तो तुम्हारा अपना कमरा है वही।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊँ?
0: ये राजम है कौन? इतना बड़ा आदमी?
1: गृहस्थी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
0: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं।
2: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्ना को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कनाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टुमाले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अन्यान्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंशवृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा डब्ल्यू नीरदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की सेवा के लिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: आया हूँ घर में, वही रोटी रोटी खा के
1: जी। बहुत अच्छा किया आपने। नमस्ते इंद्रमान जी।
0: नमस्ते मैडम, जय
1: बोलिए। क्या गाना सुनाए हम आपको?
0: फिल्म का नाम है वारा
1: जी
0: और गीत के बोल है सुनो बोला जी, गायक किशोर कुमार आशा किशोर कुमार मिलकर देवानंद जी का सुनो का गाना है। फिल्म का नाम है वारा और गीत के बोल है सुनो बोला जी, गायक किशोर कुमार लता मंगेशकर देवानंद जी का फिल्म का गाना है
1: जी।
0: और सबसे पहले गीत आप दोनों को डिक्लेयर कर रहा हूँ
1: जी। शुक्रिया।
0: आकाशवाणी बैरमपुर उनके सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों, आपके परिवार जन रिश्तेदारों को, आपकी फैमिली में बच्चे में निरीक्षक साहब को, हेलो रेडियो श्रोताओं को, पूरा पूरा उड़ीसा से जुड़े श्रोताओं को डिक्लेयर कर रहा हूँ
1: जी। तो आपका पसंद का ये गाना वरेण फिल्म का हम आपको सुना देते हैं इंद्रपान जी।
0: जी बहुत मैडम, धन्यवाद।
1: धन्यवाद। नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: आज्ञा नमस्कार।
1: सीधा सिनी नानी नमस्कार। मुई सुबल कुमार साहब कहुनि ग्राम पुष्पी भाया बी जिला बर्गर नानी।
0: हाँ सुबल भाई केमिति अछन्ति?
1: मु तो बहुत बढ़िया छे नानी, आप माने कंदा छन?
0: आमे बहुत बढ़िया छु।
1: आ
0: नमस्कार
1: कोना
0: सुबल
1: नानी?
0: भाई
1: नमस्कार मुंदु नानी।
0: आपन को काम सब
1: बहुत दिन
0: केमिति
1: पर
0: चाल छी?
1: काम धाम सब ठीक चली जे नानी? का बहुत दिन पर आप को संगे कथा लायनी।
0: हाँ बेले बेले एमिति होए जे कोउ थरो जल्दी जल्दी फोन लागि जे आ कोउ थरो बहुत देरी भी हे जे।
1: नहीं नानी सेटा तो नहीं से नानी, हम सब श्रोता मान को हमें समान अधिकार देवर कथा। वो दो हफ्ता तीन हफ्ता छाड़ के फोन कला भल हवा, अन्य श्रोता मैंने स्थान पे करें नानी।
0: आ सेथि पई आमे आपन को धन्यवाद दउजु जे आपन ने आम कथा मानिकी ठीक सेमिति ही करचंती। आउ एबे सावित्री अमावस्या पई आपन को साड़ी फाड़ी सब चलची ना?
1: हाँ सब तो ट्रैक के सब चली जी नानी, सब प्रस्तुति चली जी।
0: हाँ।
1: नहीं नहीं हमें साड़ी नहीं बिकू नानी, हमें सूता खाली हमारे मसले हमें सूता ता हमें घुरासु ना हमें साड़ी ने बुनू।
0: खाली सूता करंती ना?
1: सूता रो काम ताने सूता को हमें माने से नोली रे माने ताके हमें घुराऊ।
0: साड़ी जो सूता टे लगे से सूता को आपन बुढंती?
1: हां से सूता को हमें घुरासु नानी।
0: आपन को बोली आउरी एमिति केते परिवार छंती आपन को घर रे?
1: हमर घर रे आउरी एंते सूता गुड़ाबार अछन सोहे परिवार हे जे नानी।
0: हेले आपन माने जो सूता करंती सेटा केवल जो कॉटन सूता ना सिल्क सूता पाट सूता?
1: नहीं हम कॉटन सूता विशेष करी।
0: अच्छा तो को रंग केमिति कंती?
1: रंग से माने करी करी देखो नानी, आ हम को धला सूता हम को जेन सूता जन सर धला सूता।
0: हां
1: आ रंग निजे कइसे हमर जेन मेहमान माने कपड़ा नै बुन गा नानी भुलिया माने कोइ स हम।
0: सुबल भाई आज कोन गीत सुनिबे?
1: आज गीत सुमा नानी हमर उड़िया चलचित्र चिन्हा चिन्हा रो चांदो ना तो मे तारा मो

0: दो न तो मैं तारा मोती न तो मैं हीरा से किधर ना
1: भाजुन को पेंट ताले की रोटी गाय दिले ना जी
0: ना नहीं
1: ठीक अच्छी सुबल भाई अबे आपन को पसंद रे गीतटी सुनी दउ छी आपन को
0: हो ना यार गीतटा दिके डेडिकेट करमा
1: निश्चय कोहंतु
0: हो ना ने गीतटा त आपन को भौजो के पहला डेडिकेट करमी तापरे आपन दिजो भोणी को गीतटा डेडिकेट करमी ना
1: धन्यवाद
0: आउ तापरे सुदाने ले होरे पर पुरवा जसंत पगो करमसानी साहु चैतन्य पोटे सुदकान सुबो नागो पारो लक्ष्मीनारायण भाग लोकनाथ साहु लोकनाथ प्रधान भक्त जन होई राकांत होई आ भोणी मनाचन सोन प्रहार रो चुंकी कुसुम गीतांगली साहु सचिता रथ
1: ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ପଟେଲ ସେ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି
0: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଏବେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ନାନୀ ସେ ଆମର ଗାଁର ମୋର ପୁରା ଆମ ଘର ପାଖେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଟିକେ ଘଟିଲା ନାନୀ ତାଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି ଆମର ପାରାଲିସିସ ଟାଇପ୍ ର ହେଇଥିଲା ନାନୀ ଆପଣ ଖବର କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ନାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଜଣେଇଲି
1: ଏଇ ଫୋନ ଜରିଆରେ ହିଁ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲୁ
2: ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ, किए कहते भाई?
1: मु चित्रसन सबर हो कलाहांडी जिला भनीपाटना जगन्नाथपुर।
0: चित्रसन भाई केमिति अछंती?
1: मु तो बहुत भलो अछि, आपण केमिति अछंती?
0: बढ़िया अछु। भवानीपाटना रे खरा केमिति होची? जोर होची ना मझिरे मझिरे वर्षा आसुची?
1: मझिरे मझिरे वर्षा के टिके होची आउ बहुत गरम लागुछ मैडम।
2: चित्रसन भाई नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आउ खरा केमिति जे होची कहिले भल लागिला सुनी कि से भितरे आपणकर खाद्य पानी केमिति चालची?
1: आमर तो ठीक ठाक चालची।
2: कोन कोन तयारी करछंती खरा पई?
1: खरा पई आउ कोन हो दही होची?
2: छेनापोड़ पठानी क्षमा सागर भाई पाखकु ना कि
0: से कथा टी स्मिताश्विनी को इच्छा हलानी
2: नहीं आपण मानकर बंधुता एमती थाउ आमको सुनिले से सब खुशी लगे ना अपा
0: कौन तो चित्रसेन भाई कौन गीत सुनेबो जी
1: आज सुने देबे चांदनी फिल्म रो
0: आगे
1: मैं ससुराल नहीं जाऊंगी।
0: अच्छा
1: छोटा सुनाई देबे
2: चांदनी फिल्म हिंदी?
1: हां हां
2: श्रीदेवी?
1: हां हां
2: ठीक अछि। आमे
0: श्रीदेवी को अभिनय गुडा को बहुत बढ़िया लगे ना?
1: हां हां
0: तांकर जो मुहरा एक्सप्रेशन बहुत सुंदर थाए।
1: हां
2: हां सतीबेन तो माने सुपरस्टार ना के?
0: हां
1: हेलो मैडम रोइली।
2: हां हां

0: करे दीवानों मुझे पहचानो।
1: अच्छा योगेश जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
1: बढ़िया ही रहिए और अच्छी रहिए, और हमको मतलब किसी की तरह जो कार्यक्रम है हमारा फोन करते रहिए।
2: आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
0: फॉरेन कार्यक्रम ही ज्यादा सुनते हैं और लोक गीत भी सुनते हैं, वो काफी अच्छा लगता है।
2: तो आप तो समझ नहीं पाते होंगे जो लोक गीत सुनते
0: हैं। तो क्या हुआ, संगीत तो समझ में आता है।
2: यही बात होती है, संगीत इसीलिए ही सबको इकट्ठे कर देता है, सबके मन को वो चुरा लेता है।
0: जी, और हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो लगा हुआ है, पड़ोसी एक दूसरे
2: पड़ोसी है, तो बात तो यूं ही समझ में आ ही जाता है।
0: जी जी जी।
2: बहुत बढ़िया जोगेश जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: जी हमें काफी अच्छा लगा।
2: हाँ, तो हम आपके पसंद के गाना आपको सुना देते हैं।
0: धन्यवाद,
2: नमस्ते।

0: दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही।
1: स्मितास्विनी आजिर कथाबार्ता तो सरला, गीत भी शुणिले, तेबे आगामी गुरुवार दिन आम सहित कथाबार्ता हेबाई आम श्रोता को फोन नंबर दबा ना नाही।
2: दबनी केमती जोपा श्रोता बंधु, आम को फोन करबा पई आमे दुईटी नंबर रखिछु। प्रथम नंबर टी हेला 2222621, आ गोटे नंबर टी हेला 2220521,
1: आउ ब्रह्मपुर रो एसटी कोड होछि 0680।
2: आपमाने आमको फोन करिपारिबे प्रति गुरुवार अपराह्न 5:00 to 5:30 मध्यरे।
1: आपण कथाकु गीत सहित जोड़ी आमे आपणको सुनिबु प्रति मंगलवार दिन 10:00।
2: आउ एही कार्यक्रमकु आपणमाने पुणि थरे सुनिपारिबे प्रति बुधवार राति 10:00।
1: ताले आजि पई वंदना आउ स्मिताश्विनकु विदा दियंतु।
0: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और

0: देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती समान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news shared by Parajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said, both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by